0: unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
1: Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
3: दिस isn't जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव. दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस. व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी. योर फ्रेंड सेड ये ले ले. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
4: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले.
5: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
6: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट.
7: एक परिवार अटूट भरोसा.
8: 5 आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएसएस ड्रीम्स टू कम ट्रू. आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर टू द क्राउड्स. हियर आर द पिक्चर्स. सिद्धरमैया. NDTV स्टैंड्स कंप्लीटली एंगेज्ड विद कर्नाटका.
9: हाई रेट चेक द ऑडियो.
8: लेट्स डू इट.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियल मसाला।
5: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world in transition. Uncertain. Unpredictable. Volatile.
5: India and the UK should have a special partnership.
4: Nations are choosing.
6: Vibrant nation of 1.4 billion people.
4: Challenging.
7: There will be contestations, there will be frictions.
4: Repositioning.
5: And India is an example of that.
8: Dominant power changes.
4: The choices of today would define the world of

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस, डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स, एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। 22nd and 23rd October, only on NDTV.
7: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
8: कौन देखेगा फिर फिल्में?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सैनिको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वक्त के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
3: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
4: एंड सैनिको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
5: एक परिवार अटूट भरोसा,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाह मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन। As global equation shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: 5 आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएस ड्रीम्स टू कम ट्रू। आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर इनटू द क्राउड्स। हियर इज द पिक्चर सिद्धरमैया।
13: एनडीटीवी स्टैंड्स कंप्लीटली एंगेज्ड विद कर्नाटका।
14: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
13: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
15: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
13: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर। व्हाट इज इन योर लेटर? यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स।
16: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
17: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
18: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
19: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
20: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
11: नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्गन मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
2: कौन देखेगा फिर फिल्में?
3: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
4: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
5: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
2: कौन देखेगा फिर फिल्में?
3: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
4: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
5: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: देखेगा फिर फिल्म में?
1: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
2: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
3: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
6: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
7: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन। As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
5: यू नो डिजाइन्स कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर
6: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
7: एक परिवार अटूट भरोसा।
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन अनरिटन। As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
3: कौन देखेगा फिर फिल्में?
11: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
12: की जिम्मेदारी सिर्फ BMC की नहीं है।
7: ITW presents NDTV युवा 2026।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: वक्त के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
5: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
6: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
7: एक परिवार अटूट भरोसा।
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
9: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
6: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Rachel Sager. What's happening? How?
8: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
11: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
13: 5 आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएसएस ड्रीम्स टू कम ट्रू। आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर इनटू द क्राउड्स। हियर इज द पिक्चर सिद्धरमैया। एनडीटीवी स्टैंड्स कंप्लीटली एंगेज्ड विद कर्नाटका।
14: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
13: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
15: ब्रेकिंग स्टोरीज, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
13: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर। What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
16: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
13: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
17: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
16: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
13: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
12: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
18: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, 4 लोगों के पास है।
19: कुछ इससे भी अनोखा,
18: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
12: दिस इज अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, अनसर्टेन, unpredictable, volatile.
20: India and the UK should have a special partnership.
12: Nations are choosing.
21: Vibrant nation of 1.4 billion people.
12: Challenging.
22: There will be contestations, there will be frictions.
12: Repositioning.
20: And India is an example of that.
23: Dominant power changes.

0: आईसा नेहा वोरा के नाम, उसके बाद 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर कांग्रेस के नाम राहुल गांधी के नाम हो गया, अभी आपका आ गया काकरोच जनता
1: पार्टी। अभी कांग्रेस और इनका तो कल से खत्म है ना, बिकॉज नाउ द सीजेपी इज गोइंग टू टेक ओवर बिकॉज राहुल गांधी इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो फॉर छात्रों की।
0: वो छात्रों की गूंजी उनका चेन्नई में है, इनका कांग्रेस का भी आगे का प्रोग्राम है, ये तो लंबा प्रोग्राम बना रखा ना इन्होंने। तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट में हो गया, सब जगह हो गया, अब दिल्ली में फिलहाल अभी कुछ नहीं है।
1: नाउ दे हैव पास्ड द बैटन ऑन टू काकरोच जनता पार्टी, बट इज एवरीवन ऑन बोर्ड, इज Akhilesh Yadav really on board? Because yesterday when everyone, the Congress was on the streets, everyone else was on the streets, Akhilesh Yadav was in Ayodhya. Now Sanjay Raut, Uddhav Thackeray haven't turned up. Sab kuch theek hai?
2: नहीं, सब कुछ ठीक तो नहीं है मुझे लगता है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि जिस पर राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को जानते हैं कि सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं जीता जा सकता। समाजवादी पार्टी का कंसर्न सबसे ज़्यादा अभी यूपी चुनाव होने वाला है, तो वो फोकस अपने चुनाव पर डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ इस फोकस के ऊपर चुनाव नहीं लड़ने जाएंगे। राहुल गांधी चूंकि यूपी में बहुत पावरफुल नहीं है, कांग्रेस का बहुत ग्राउंड नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ गणेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव उस पर सहमत नहीं होंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बात, अभी महाराष्ट्र में कोई ऐसा बड़ा चुनाव है नहीं, उद्धव ठाकरे विधानसभा हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, नगर निगम के चुनाव हार चुके हैं, पार्टी टूट चुकी है, सब चला गया, तो उद्धव ठाकरे को बहुत ज़्यादा ये कंसर्न फिलहाल है नहीं कि ठीक है राहुल गांधी कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट है। ये देखने वाली बात होगी कि अब कल आज राष्ट्रपति से मिलने के बाद कल जो काकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन होगा उसको सरकार किस तरीके से हैंडल करती है, क्या उनको बैठने को देती है, क्या एयरपोर्ट से बाहर निकलती है अरेस्ट कर लेती है। अगर सरकार इस आंदोलन को कंट्रोल कर लेती है, आंदोलन नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि कल राहुल गांधी चेन्नई जा रहे हैं छात्रों की गुज के कार्यक्रम, उसके बाद राहुल गांधी क्या करेंगे, क्या राहुल गांधी फिर आने के बाद इसी तरह से जंतर मंतर राजघाट या फिर आकाशवाणी या फिर
1: गणेश कुमार के घर कैलेंडर में वापस आके अपना कुछ आगे का प्लान करेंगे और वो बताएंगे नहीं, वो फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड ओवर द लास्ट 4 डेज इज गोइंग टू बी
0: मुझे लगता है कि आगे मीटिंग्स का है, रैलीज का है, वो पूरा उन्होंने बना कर दिया हुआ है,
2: लेकिन मुझे लगता है
0: कि जो उनका जो छापामार तरीका है ना वो किसी को नहीं पता है कि इसके बाद क्या करेंगे, वो कॉन्फिडेंस।
1: सो नाउ इट्स गोइंग टू बी गुरिल्ला वॉरफेयर, बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, द यूनियन होम सेक्रेटरी एंड परहैप्स दैट इज व्हाट दे आर गियरिंग अप फॉर, द यूनियन होम सेक्रेटरी हैज written to DGPs across states. What they basically have said is that you have to maintain law and order, the strengthen, the security arrangements need to be strengthened, and any breach of tranquility needs to be preempted. Critical public infrastructure also has to be safeguarded. Bhupen, do you think this was excessive? Because even today, the Supreme Court said you can't stop all movement. Remember what had been done through the day, and we'll just put out that data in a bit. Practically all the metro stations, 57 metro stations had been shut down. Movement was greatly, hindered. Some people were very upset about how even liquor vans had been shut down in Delhi for no obvious reason.
3: It's a weekend.
1: Excessive or is this scare?
3: No. So I think what the central government is trying to do, and it's very, very clear to me as we look at these live pictures coming from Parliament, is that the government has made a clear-cut distinction between dealing with the CJP and dealing with the elected political class. Like them, dislike them, but the Congress party along with the other allies of the India Alliance are all elected representatives. So there has to be a political approach in terms of dealing with these individuals. But when it comes to the Kakroch Janata Party, the messaging which is coming from the government is that this is a question of maintaining administrative mechanisms and it's a question of maintaining law and order. So as far as the Jantar potential Jantar Mantar protest is concerned, you are looking at, internet shutdown. I'm just being told that now from 9 p.m. tonight, there is not going to be any mobile internet in parts of Central Delhi. We've never heard this before. You've talked about how metro stations are closed. I'm also told that starting 9 p.m. tonight itself, the borders of the NCR region, given the fact that Delhi is, between Haryana and Uttar Pradesh, the borders are going to be sealed. Private buses are not going to be allowed inside. It's much like on the 15th of August this time around, I was actually on my way to the New Delhi railway station at around 5 in the morning. And I kid you not, Padmaja, I have not seen that kind of security. And then I was told that it was due to an enhanced security threat for the Prime Minister because he had to go to the Red Fort. Much of what I'm seeing right now around me is reminding me exactly of the security mechanisms of that 15th of August. I'm also told that starting tomorrow morning, there are going to be snipers who could be put up, at certain key locations just to ensure that there is this unwanted or let's say unknown element of terror of anti-social elements. I'm told that the Delhi police has already gone to the extent of doing facial recognition of around some 2,800 to 2,900 so-called anti-social or criminal tendency-oriented people who are all a part of the 20th of July protests. Mm. The Delhi police does not want to take any chance this time. The number of extra, the number of paramilitary security personnel that you've now got, you know, between BSF, CRPF, RAF, we've not seen anything like this before. Mm. Clearly, the government is worried that this protest, the so-called, you know, Cockroach Janata Party protest, could actually just end up spiraling into something else. So the government is taking just those two extra steps.
1: But is this actually, you know, increasing the standing of the CJP? Because look what the CJP is saying now. Ashutosh Ranga speaking a while ago saying that the government is more scared of us than it has been of anyone else, given the kind of, you know, the kind of tayari that you see in the national capital. Listen into what he said a while ago.
4: नहीं पापों की हवा बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, ट्रेन बंद कर दी है, मेट्रो बंद कर दी है, सड़कें बंद कर दी है, हवा भी बंद कर देंगे, पानी भी बंद कर देंगे, लोगों का सोना भी बंद कर देंगे, लेकिन उससे प्रोटेस्ट रुकने वाली नहीं है। कल सुबह जंतर मंतर पर मिलते हैं साथियों,
5: थैंक यू। मिलेंगे सर, सब लोग मिलेंगे,
6: बिल्कुल रोका जाएगा, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है,
4: करने दीजिए, सबको अरेस्ट करने दीजिए, हम तो बहुत दिनों से रेडी बैठे हैं अरेस्ट होने के लिए।
1: All right, in fact, ahead of that stir that is going to take place tomorrow, which Ashutosh Ranka was just talking about, the police have held a high-level meeting that is to review the security arrangements. New Delhi district has been divided into 20 zones, and like we have been saying, each one of these zones also has been fortified. 23,000 security personnel from the armed, from the CAPF, the Central Paramilitary Forces, have also been brought in. Let me go straight across to Tejshree for more on that. What more are you learning, Tejshree, about this meeting that is being held by the Delhi police as we speak?
7: Well, absolutely. What we are picking up from our sources is that as of now, it's expected that approximately 7,000 protesters actually could join this entire protest tomorrow. However, the police has also been asked to maintain restraint in this entire condition. But as far as the police person's deployment is concerned, there are a lot of security deployment put at place. But here currently we are reporting from Vijay Chowk right now, where the protest is taking place of all the opposition MPs, Priyanka Gandhi sitting on dharna. But apart from that, as you asked about the what actually happened in the particular meeting. So according to sources, during a briefing by senior Delhi police officers, personnel were clearly instructed to not to react if any protester engages in provocative acts during the demonstration and to exercise maximum restraint. Sources said that Delhi police made it clear that no unauthorized gathering will be allowed, and that's why they have been instructed to detain people that will be arriving, and that's why we have also seen that how 57 metro stations have been shut. However, the Supreme Court has also already stated that make sure that not complete metro lines are shut, but there should be a restraint to a certain level that the ordinary citizen of the national capital are not affected by it. But currently I'm reporting from Vijay Chowk, and there's a massive political showdown over here, where along with the Priyanka Gandhi, other MPs are also present over here. If you could just zoom in and show, because there's a bit of network problem over here, and this 10-member delegation has already gone to meet the president, and in just short time from now they will be coming towards this very area. Actually, they were trying to move towards this barricade and then they were stopped over here. We did try to speak to a lot of MPs, and then they stated that our only demand was that the resignation of Gyanesh Kumar, the entire process of SIR should be stopped, and the voters whose names have been deleted from this entire SIR process, they all should again be included in the SIR list and in the voter list, and then the election should have been conducted by the ballot papers instead of EVM. This is what the...
1: Let's tell our viewers, while we stay with those pictures, the delegation, the 10-member delegation which you're seeing on your screen right now, has gone in to meet the president. It has Mamata Banerjee there, it has got Rahul Gandhi, it has got Thor Thirumavalavan of the TVK also, present over there, not of the TVK. He has his own separate party. So all of these leaders have already gone in. They are set to meet the president anytime now. And we've got the inside scoop of what these MPs will be demanding. One, to remove Gyanesh Kumar as the chief election commissioner, stop the SIR process altogether, restore the 13.3 crore names who have been excluded. They have been flagged up in the entire process. So 13.3 crore excluded names should be brought back, which is a little difficult because among these 13.3 crore excluded names are also those people who are dead, almost 6 crore such people who are dead. So how will one put those names back? But these are the demands which are likely to be put in front of the president. Akhilesh, would you like to add something to this? Are there any other demands as well? But very significant, they're saying we have to stop the SIR process altogether.
8: See, SIR process is already over in many states now. As far as Delhi is concerned, sources have just told us that they are hoping that in the next 1 week or so, this entire process will be over and completed in Delhi also. So whatever complaints are there, they will be addressed. You know that Election Commission in the past few days has taken many steps. They have said very clearly that a special campaign will be launched to include all those who have been left out. They will be given a chance. In fact, the officers will be going to their residences and they will be asking questions and will be asking them to fill forms. So the government is very clear that as far as the SIR is concerned, the process is has been very smooth. It has been upheld by the Supreme Court. That's what the Election Commission is saying. And they are saying that in the coming days also, whatever complaints are there, they will be addressed. As far as opposition parties are concerned, they are saying that all those 13 crore names which have been excluded should be included once again. As you rightly pointed out, Padmaja, there are many who are no more in this world. So how come their names can be included? This is the big question. Second point is that there are many names which are duplicated. I mean, they have more than one residence. So that name has to be excluded as per the law. This RPA is very clear. The Representative People's Act says that you can't have your name registered from two places. Mm. So those names have to be scrutinized and excluded from the voters list. Okay. This is the entire process.
1: Okay. So first, Gyanesh Kumar needs to go as Chief Election Commissioner. Names need to be brought back and the SIR needs to be put on hold. Please keep in mind that 20 states already, 20, right? This 20 states, the SIR process is already underway or it has been completed.
3: Well, there are three straight answers to these three straight questions. Firstly, is the SIR going to be stopped? Akhilesh has given that answer. That's not possible. Anyways, that matters before the Supreme Court for any further clarification, etc. There is nothing that's happening on that front. Is Gyanesh Kumar going to be removed? My understanding, and I've said this myself on multiple occasions, is what the government was on the back foot. But it's very clear to me now, looking at the distinction, the straightforward demarcation of the approach, the government is in no mood to get rid of Gyanesh Kumar. Gyanesh Kumar is also not going anywhere, therefore. And the third point, is the protest going to happen? You're just playing the soundbite of Ashutosh Ranka at Jantar Mantar. Look, boss, the kind of security arrangements that have been made, the extent to which the Delhi police has gone, where hotels, Airbnbs, potential places where protesters could have all, you know, gone in, the police has gone to the extent of fishing out people from such places. Mm. So I cannot fathom people. Suppose you want to go to Jantar Mantar tomorrow. How are you going to go? You're not going to walk. Right, 10 kilometers.
1: No, we will.
3: Well, I mean,
1: we are very used to this.
3: Cool.
1: So one has to report.
3: One has to report. But as a, you know, as a protester, what happened last time, you remember? When they closed the Mandi House metro station on the 20th of July, then the call was that if you cannot get to a particular place, wherever you are, you start doing a dharna pradarshan. Mm. I think that was the high of 20th of July. An emotive issue such as NEET, this vote chori, deeply political issue, deeply contentious issue. I don't think it still gets in the heart of that youngster, at heart of the Gen Z person.
1: You know, whether it strikes a chord with the normal person or not, but are you going to end up creating these little pools of discontent? Because ye CJP ne kya bola hai, Sameer ji? Unhone kaha hai ki jahan hame roka jayega, hum wahin pe baith ke jantar mantar bana denge. Ab aapne jagah jagah pe aapne ja kar ke Madhya Pradesh mein, Maharashtra mein, Rajasthan mein logo ko roka hai, UP mein log Bulan Shahar ya kahin se video bana karke dal rahe hain ki hame yahan par ghar pe roka ja raha hai. Ab agar aap har shahar shahar ja ke log dharne pe baithna shuru kar denge, what is the government's plan to deal with this? And it's interesting in this context to remember that the DGP just said that, all the state DGPs have been told that please ensure that there is law and order in your respective states, which means that they are also anticipating that this could be more than just Delhi, that this could spread across the country in other states as well. Sameer ji, plan?
2: मुझे लगता है इस बार पुलिस प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट किया हुआ है. जो लास्ट टाइम का जो झंडा प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हो गया था, अब मुझे लगता है कि सरकार किसी भी तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी को स्पेस देना नहीं चाहती. और जिस तरीके से अरेंजमेंट किया है, बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस जनता पार्टी के लिए. मुझे लगता है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है कि जहां हमें पुलिस रोकेगी हम वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, ये संभव नहीं होगा. पुलिस उनको लेकर कहां जाएगी ये मुझे नहीं पता, मतलब किसी को नहीं मालूम होगा. पुलिस उनको क्या रामलीला मैदान लेकर जाती है? पुलिस उनको लेकर कहीं और लेकर जाती है? नज़रबंद करती है, देखने वाली बात होगी कि कल कितना करोड़ आता है और पुलिस ने उसके लिए क्या स्टेप्स उठा के रखे। लेकिन यह बात भी चाहिए कि पुलिस इस बार किसी भी तरह से ढिलाई करने की स्थिति में नहीं है, उन्हें थोड़ा भी स्पेस नहीं देगी कि वो दिल्ली में कहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर सके और उनके साथ क्राउड आ सके। पहले ही प्रिवेंटिव स्टेप पुलिस ने इतने ले लिए कि जनता का वहाँ पर मतलब युवाओं का या उनके साथ जो समर्थक उनका पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, उनको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे करेंगे, इंटरनेट बंद रहेगा, मैसेज कैसे करेंगे।
1: ट्रेनें रोक दी हैं अभी आपने 20-25-30 ट्रेनें रोक दी हैं, आप कब तक ट्रेन रोकेंगे? चलिए आप सैटरडे को रोक लेंगे, संडे को रोक लेंगे, फिर मंडे को क्या होगा?
2: बिल्कुल यही सबसे बड़ा मतलब प्रशासन के सामने चुनौती होगी कि ये कब तक उनको रोक पाएंगे और कांग्रेस जनता पार्टी के जो लीडर्स या कांग्रेस जनता पार्टी इसको कब तक कंटिन्यू कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
1: जस्ट कमेंट ऑन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इवन एज द डेलीगेशन हैज गॉन इनसाइड, कैन वी जस्ट अप द ऑडियो लिटिल बिट इफ वी कैन गेट एन ऑडियो ऑन व्हाट प्रियंका गांधी से। Okay, I don't think we have it yet, but this is very interesting. Rahul Gandhi has gone inside. Priyanka Gandhi is at the barricades and she seems to be saying something to the police even now. Wo apne haath pe poster lekar ke, Priyanka Gandhi. What is the thinking in the government of this Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi duo who seems to have really been the master strategists over the last 4 days?
8: What they are saying that there is no unanimity as far as the India alliance is concerned. They are saying that there is a difference of opinions among the alliance partners. As you also mentioned in the beginning that the Samajwadi Party was not on board. And after that, like today, Shiv Sena, UBT,
1: there
8: were some
1: doubts about... Today, Rajiv Rai is there.
8: Rajiv Rai is there. But the way they have been conducting, they feel that the way Rahul Gandhi is taking the lead. So with that lead, is the alliance partners, they are happy or not? This is a big question. They're also saying that within the Congress, there's also a difference of opinion whether to continue with this kind of agitation or not. This is what the government is saying. Other point, they are saying that the way more than 40 MPs, they did not participate, they actually, you know, just vanished. And the KC Venugopal was worried about that. All these factors...
1: 40 MPs of the Congress.
8: Of the Congress party. They were not part...
1: They haven't come for the last and 1 week. They haven't been there.
8: KC Venugopal has sought their names and sought clarification. This is what we have reported. So all this indicate that, you know, everything is not well. And this is Rahul Gandhi's style. They know it very well. But now they also say that maybe Rahul Gandhi feels that last time on the NEET issue, he was left behind and the CGP stole the limelight. Maybe that's why this time he is very cautious and he's taking a lead.
1: So, Samir ji, in fact, ये भी कहा जा रहा था कि अब चलिए खुद कांग्रेस के कुछ लोग अगर 40 सांसद नहीं आते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। कुछ एक ऐसी भी कहानी थी कि कोई सांसद थे कांग्रेस के, वो एक पैदल चल के गए प्रियंका गांधी के साथ थोड़ी देर तक, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल लिए।
2: राजस्थान के सांसद मुझे लगता है बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहे, और जो खबर जो आ रही है सब राजस्थान के सांसदों की है,
1: कांग्रेस के सांसद
2: है। और जो खबर चल रही है कि बाद में ऑटो से वो घर चले गए, कुछ देर के लिए उन्होंने चेहरा दिखाया और वो चुपचाप से निकल गए, वो राहुल कस्बा को लेकर आ रही है जो चुरू के सांसद है, उनके बारे में खबर चल रही है कि वो ज़्यादा दुखे नहीं है। और मुझे लग रहा है कि सांसदों को भी लग रहा होगा ना कि भाई इसका अल्टीमेटली क्या, कब तक आप इस तरीके से करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसद भी इस बात से तैयार नहीं है, सहमत नहीं है कि इस तरीके से आप कब तक ज्ञानेश कुमार को लेकर मोमेंटम खड़ा करने की कोशिश करोगे और उसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा। देखिए जनता पूरी तरीके से इससे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। आप आज देखिए आज जो उपचुनाव के चुनाव परिणाम आए, कहाँ लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं समर्थन इसको लेकर मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के सांसदों को भी इसको लेकर एक अंदर थोड़ी नाराजगी है कि भाई बिना पूछे पार्टी तैयार कर रही है। सहयोगी दलों को भी नाराजगी है कि भाई राहुल गांधी ने कॉल कर लिया और राहुल गांधी सीधे जाकर आकाशवाणी भवन के अंदर बैठ गए, बाकी सांसदों को पता नहीं था, विपक्ष सांसदों को, वो चले गए अपने घर पर। दूसरे दिन आप लंच पर बुलाते हो और आप उसके बाद सीधे जंतर मंतर चले जाते हो, बाद में आप बुलाते हो आप राजघाट चले जाते हो। तो आप इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करके आप रणनीति तय नहीं कर रहे हो कि किसको क्या भूमिका निभाना है, अखिलेश यादव की क्या होगी, तेजस्वी क्या होगी, उद्धव का उसके अंदर क्या कंसर्न है, सब मिलकर कैसे इसके आंदोलन को लीड करेंगे। जो राहुल गांधी को लग रहा है राहुल गांधी वो तय कर रहे हैं, कांग्रेस उस पर आगे बढ़ रही है और सहयोगी दलों से जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है उनसे कह रही है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। मतलब उनको लग रहा है कि भाई हम कोई पपेट थोड़े कि जो राहुल गांधी कहेगा उस हिसाब से हम मूव करेंगे।
1: दिस शुडंट एंड अप बीइंग अ राहुल एंड प्रियंका शो।
3: वेल एक्चुअली टू द राजस्थान स्टोरी देयर इज अ सबप्लॉट टू इट। यू सी आई डोंट नो, देयर वाज अ वीडियो व्हिच रिसेंटली केम आउट जस्ट यस्टरडे बिटवीन अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट at a gathering where Sachin Pilot was pulling Ashok Gehlot towards the cameras and saying, "Arre, aap hamare bade bhai hain." Now in Rajasthan, see, Sachin Pilot has been given a huge responsibility of managing Punjab. So therefore, it's an upliftment to his profile. What happens to Ashok Gehlot then? He has to be assertive. Look at these, you know, in all the pictures, who are the three people? KC Venugopal, Dipender Hooda, and today we're seeing DK Shivkumar as well.
1: And Raja Wadding.
3: And Raja Wadding.
1: You know, Rajiv Varing, 1 week after he's been removed as president, removed. Is sitting right next to Priyanka.
3: What you're not seeing, at least I haven't seen Ashok Gehlot anywhere in the pictures. And you know, he's a multiple-term former chief minister, a heavyweight.
0: He's not an MP.
3: He may not be, but you know, he's a supporter of.
0: Did you think not there? Sir,
3: no. There's a difference. There's a difference between Ashok Gehlot and a Digvijay Singh.
0: Former chief minister. Just a minute.
3: Ashok Gehlot. Are you saying that Ashok Gehlot is not responsible in any way?
0: No, he's responsible.
3: If the MPs are coming or not, this
0: agitation is only for MPs. Just a minute. Yes. That is why Digvijay Singh is not there. Yes. Kamal Nath is not there. Ashok Gehlot is not there.
3: Chief ministers are there.
1: DK Shivkumar is there.
0: Chief minister is there. Nah.
3: I would actually like to counter argue Padmajah that if this is such a big thing, yeah, and if Rahul Gandhi is putting everything on the table, why should all these leaders not be there? Please tell me. I'm actually good that you mentioned this, Vinodji. I would have assumed that with all these former chief ministers, all these big Congress heavyweights,
0: Chidambaram is not there.
3: They should have all thrown their weight.
1: I haven't seen P. Chidambaram.
0: That's why I'm saying. It's not a call कि सारे कांग्रेस आदमी सब कांग्रेस में वहाँ पहुँच जाएं
3: क्यों नहीं होना चाहिए
0: तो नहीं अभी
3: लेकिन अरे आपके नेता
1: शक्ति प्रदर्शन में तो होना चाहिए
0: होना चाहिए अलग बात है नहीं होना ये आपका भी पॉइंट उनका भी पॉइंट है ये एमपीस का है ये इरिटेशन इसलिए वो होना चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए था अजय राय को भी होना चाहिए तो कलकत्ता के अध्यक्ष को होना चाहिए तो अलग बात है लेकिन क्या क्या होना चाहिए दैट इज डिफरेंट थिंग लेकिन ये है कि ये एमपीस की कॉल है हाँ कस्बा का जैसे इनका देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस को इस तरह के एजिटेशन की आदत कभी रही नहीं है वो इंदिरा गांधी का जमाना था जब इंदिरा गांधी लड़ी थी 77 में कांग्रेस के लोग का खाली ये था कि आप एक डेलीगेशन निकाल के जाइए ज्ञापन दीजिए और थोड़ा बहुत फोटोशॉट शूट करिए और चले आइए ये पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस को और अपोजिशन के सारे लोगों को सड़क पर ला दिया है कि अब तेजस्वी यादव बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं जो चढ़ कैसे चढ़ रहे हैं अखिलेश यादव वहाँ बगल में खड़े थे बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो राहुल गांधी ने अनएक्सपेक्टेडली पूरे अपोजिशन को इतना एग्रेसिव बना दिया है अब चैलेंज जो है क्या ये एग्रेशन कंटिन्यू करेगा दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज
1: देखिए प्रियंका गांधी इमेजेस वी आर सीइंग व्हाइल शी इज स्टैंडिंग देयर एट द बैरिकेड्स शी इज स्लोगनियरिंग अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन एंड शी हैज गॉट अ पोस्टर डेमोक्रेसी का सौदा किसने किया स्पेशल 420 अ टेक ऑन ओके आई कैन सी मोहिबुल्ला नदवी ऑल्सो ऑफ द समाजवादी पार्टी ओवर देयर सो इन एडिशन टू राजीव राय यू गॉट मोहिबुल्ला नदवी डेमोक्रेसी का सौदा किसने दिया तरुण गोगोई इज देयर बट अमंग द वुमेन देयर आर अ लॉट ऑफ नॉन एमपीज ऑल्सो यू गॉट पीपल लाइक अलका लांबा इज देयर दानिश अली इज देयर यू गॉट पीपल लाइक
0: नहीं मना नहीं है देखिए मना किसी को नहीं है कि दानिश अली आ जाए या अशोक गहलोत भी आ जाए कोई मना कर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंडेटरी नहीं है
3: नहीं वो सही बात है
1: सुकविंदर सुक्खू भी है सो ऑल द चीफ मिनिस्टर
3: आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये लोग नहीं आए बिकॉज पद्मजा दिस इज एग्जैक्टली
8: भूपेश बघेल इज देयर
1: भूपेश बघेल इज देयर सर अब तो देखिए एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अगर वहाँ छत्तीसगढ़ के खड़े हैं तो अशोक गहलोत नहीं है
3: दिस इज सी इफ द एंटायर रैंक इन
0: 75 प्लस नहीं है बिलो 75 है तो जिनको आगे पॉलिटिक्स करनी है वो हैं जिनको रिटायरमेंट लेना है भविष्य में वो नहीं है
1: आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में 75 प्लस पॉलिटिक्स नहीं करते तो खड़े
0: नहीं कर रहे धीरे धीरे फेज आउट तो हो ही रहे हैं
3: आज कमलनाथ अच्छा लाइन हम लोग
0: आज कमलनाथ कहाँ है बताइए आज कमल दिग्विजय सिंह अपने पॉलिटिक्स उनका रोज ट्वीट आ रहा है मोस्ट वो बेटे को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं अशोक गहलोत भी अपने बेटे को बढ़ाने
1: दिग्विजय सिंह तो अभी यात्रा पे निकले हुए हैं ना अयोध्या की यात्रा के लिए कुछ पंचतीर्थ
0: यात्रा अलग चलता है उनका तो मैं कह रहा हूँ कि जितने आपके 75 प्लस हैं वो नहीं है चिदम्बरम हो दिग्विजय हो कमलनाथ हो ये अशोक गहलोत हैं या इवन सिद्धारमैया अब खाली खड़गे जी को छोड़ दीजिए वो अध्यक्ष हैं वो तो रहेंगे ही वो 80 प्लस हैं
1: ओके अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर आई वांट टू शो यू द ओनली लेडी आई कैन सी राइट नाउ राइट नेक्स्ट टू प्रियंका गांधी इज महुआ मोहित्रा ओवर देयर व्हिच इज क्वाइट interesting considering that we've got two bipole results from West Bengal where the Congress and TMC were fighting against each other on at least one of the seats. Of course, in Nandigram, TMC candidate had dropped out, but in Reginagar, they had fought against each other. The Congress came up in third position and the BJP won that seat. But I want to play out what Shamik Bhattacharya and Shuvendu Adhikari said on the back of the results that we have seen because while we wait for the delegation to come out after meeting the president, democracy ka sauda kisne kiya? Ironically, democracy in a way has been validated, or at least the voting process has been validated by the results that we saw in those six seats. So let's play out for you what the chief minister and the BJP chief in West Bengal said after these bipoll results.
9: जो भ्रम पैदा करने के कारण ममता बनर्जी और सीपीएम और यहाँ जो सिक्योरिटी मानी फॉरफिट हुआ अपोजिशन है, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया था बीजेपी आने के बाद आप लोग को यहाँ सब खत्म हो जाएगा। ये लोग का एक्सपीरियंस बदल गया, इस लोग सरकार का साथ आ गया है। आने वाला जितना चुनाव होगा आप देख लेना, खास करके बेंगोली स्पीकिंग मुसलमान का ज्यादा वोट सरकार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष में होगा।
10: यह भी अल्पसंख्यक लोगों को लेकर ये जो विभाजन का राजनीति उन्होंने इतना दिन से चलाया, उसका भी अंतिम क्षण आ गया।
9: कारण उन्हीं एक समय 70% दम्भ देखिए

0: সেই 70% একটা বড় অংশ আজকে তো ভোট দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। এইসব র্যাডিক্যালিজম পশ্চিমবাংলায় চলে না, এটা 1947 জুন বাঙালি কংগ্রেস ভারত ভাগ করেছিল আর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পাকিস্তানকে ভাগ করে দিয়েছেন। অতএব এখানে এসব চলে না, মূল লাইনের স্রোতে সবাইকে আসতে হবে। 46% ভোট পেয়েছি আমরা রাজ্যে, আগামী নির্বাচনগুলোতে 60%-এর বেশি ভোট পাবো।
1: You know what is interesting is that during this entire election campaign in Reji Nagar, which like I said earlier is a 65-70% Muslim population seat, Shubhendu Adhikari had made a very interesting comment, Akhileshji, and he had said that this is a test for Muslims, whether you want to work with us or whether you want to constantly be opposed to us. Does the BJP really think that in places like West Bengal, in other parts of the country, Muslims are going to vote for it?
2: I do not think so, because they don't give tickets to Muslims also on this premise that they don't vote for us.
1: Then how did they win Reji Nagar?
2: I think it's because the Muslim votes got divided. There are so many Muslim candidates, so the votes were divided, and that's why BJP candidate has won. But of course, you should not forget that BJP has just won the assembly election with a thumping majority. We can call it a honeymoon period. And normally, it does not happen that within 6 months or so, you lose a by-election. It doesn't happen that way. So I think the BJP's win was sure shot in these two assemblies. Of course, the margin is very surprising, because Shubhendu Adhikari recently said that in the next 2029 Lok Sabha elections, he is going to present all 42 Lok Sabha seats to Modi ji. So he has set a very ambitious target for the next Lok Sabha election, and he is working hard for that.
3: See, also, you know, between Hemanta Biswa Sarma and now Shubhendu Adhikari, bear in mind that these two, you know, young guns who are seeing a better, brighter future for themselves.
1: What brighter future?
3: Well, I mean, you know, 2029 is still a little not too...
1: Chief Minister ban gaye, isse kya bright hoga?
3: Chief Minister to Modi ji bhi the. Ek samay mein Yogi ji bhi hai abhi. Yogi ji bhi hai abhi, by the way.
4: Modi ji the original BJP.
3: Well, I mean, main keh raha hu, Yogi ji bhi the Mukhya Mantri. You see, once you have become the Chief Minister of a big state, like...
1: Are you saying that a former congressman is going to aim to become Prime Minister via the BJP?
3: I'm saying Hemanta Biswa Sarma, for sure, If the potential succession, which consistently gets spoken about within the BJP, if a potential succession takes place, how is it that Hemanta Biswa Sarma, who has now endeared himself so much to Amit Shah, may not be looking at something bigger, for himself? Shubhendu Adhikari is at the starting point of the journey. He's just become the Chief Minister of West Bengal. He has to hold on to the state. He has to keep delivering election results for the BJP. And therefore, he'll obviously say that, I'll continue to present these 42 seats for you. I think, both Shubhendu Adhikari and Hemanta Biswa Sarma there are similarities in their work styles, right? They're both very, very careful, A, of their individual images. B, they know how to work with an organization. They know how to build an organization from scratch. That's what Hemanta Biswa Sarma has done. This is what Shubhendu Adhikari is doing. Hemanta Biswa Sarma got an entire mass of former Congress leaders into the BJP in Assam.
1: In fact, so much so that the Congress was saying that there are more Congressmen in BJP in Assam than actually BJP.
3: And in Shubhendu Adhikari, everybody was taking to the streets that why is Koel Malik being given Raj Sabha ticket and how many Trinamool Congress people have come to the BJP. It's a part of a playbook, that you finish off the opposition to this degree where the opposition ends up being completely consumed by you.
1: Although I don't know if Hemanta Biswa Sarma wants to move to Delhi, considering har 3 mahine mein koi ek khabar phaila deta hai ki Sarbanand Sonowal is going to become Chief Minister.
4: And Hemanta will move to the
3: 29 ke baad ki baat kar raha hu, mind you.
1: 29 ke baad.
4: Tab tak kitna pani behta hai Ganga Jamna aur Brahmaputra mein.
5: By election result ko leke sabse badi
6: cheez hai na ki Viksit Bharat jab tak nahi hoga tab tak wo kahin ja nahi rahe hain, thak nahi rahe hain, Viksit Bharat bana kar ke dam lenge.
1: So Hemanta and Shubhendu can be in their Assam in West Bengal till 2047.
4: मुझे लगता है बाय इलेक्शन रिजल्ट को लेकर ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चिंता होना चाहिए. कांग्रेस तो ठीक है, सब जगह लूज करती है, कांग्रेस का तो
5: वहां थी भी नहीं
4: है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने अगर कांग्रेस कैंडिडेट सपोर्ट किया उसके बाद आपका वोट परसेंटेज जितना कम हो रहा है पिछले इलेक्शन की उतना भी आपको वोट नहीं मिल रहा.
1: एक सीट पे लड़ी है ये ममता, एक सीट पे ममता बनर्जी की पार्टी लड़ी है, रेजी नगर में लड़ी है, रेजी नगर में उनका कैंडिडेट था.
4: हां, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हार रहे हो आप ना. लेकिन मुझे लगता है कि ये कह देना कि भाई रूलिंग जो सरकार है उसके उपचुनाव जीते जाते हैं, बाकीपुर में तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, करीब इतना स्ट्रांग सीट थी, कैंडिडेट भी देखा जाता है ना, देखिए अगर प्रशांत किशोर वहाँ पर है, उसने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जो लंबे समय से 30 साल से बीजेपी के पास थी उसको हरा दिया। दतिया हरे, दतिया में तो फिर बीजेपी ये कह सकती कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी खरवा दिया, लेकिन बाकीपुर में तो पार्टी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, वहाँ पार्टी बीजेपी हार गई। तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे बंगाल के अंदर वापसी करेगी इस परिस्थिति के अंदर।
1: जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव, रबीउल आलम चौधरी ऑफ द ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गॉट अ वॉपिंग 3,847 वोट्स। फॉर पर्सपेक्टिव, बीजेपी गॉट 1,29,000 वोट्स। आम जनता उन्नयन पार्टी, हुमायूं कबीर सन, got 54,000 votes. And Mamata Banerjee, who was a three-term chief minister, her candidate in a Muslim majority seat, has got 3,847. The Congress got almost double of this, 6,100.
4: Deposit lost ho gaye, deposit loss ho gaye inke.
7: Congress ne improve kiya, 4,000 se uske jo hai 2,000 vote bad gaye. Pichli baar 4,101 vote.
1: Moral victory ho gaye.
7: Moral victory ho
3: gaye. Party itself, Mamata Banerjee's entire Trinamool Congress, Raj Sabha, Lok Sabha, Vidhan Sabha, everybody is moved en masse. You know, the BJP, what kind of election are you thinking that Mamata Banerjee would have been able
1: Mamata
3: to
1: Mamata Banerjee in particular, what is her future now? Because I remember last time in the India Alliance, Mamata Banerjee had stayed away and we were reading reports that she had said very clearly that if the Congress is going to have this big brother attitude and in particular Rahul Gandhi, she was not comfortable. Now she sat next to Sonia Gandhi and she was saying Gyanesh Kumar must go, Gyanesh Kumar must go. वो आगे करेंगी क्या? वो राज्यसभा आएंगी क्या? What will she do? She didn't even fight this election.
7: राज्यसभा कैसे आएंगी?
6: राज्यसभा के लिए भी इसको
7: वहाँ तो अब वो तो सारे MPs चले गए उधर, MLAs सॉरी।
1: तो एक कोई सीट है ना जो कि लोकसभा की खाली है, जिनके उनके सांसद थे जिसकी डेथ हो गई थी, कोई मुस्लिम
7: बशीरहाट
1: बाशीरहाट में, could she fight that election maybe when bipoles are held? I am very curious, why was the bipole for
7: Bashirhat? वो ममता जी अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर ममता जी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पूरी कोशिश करेंगे कि ममता जी को चुनाव हार जाएं, और ममता जी चूंकि दो बार हार चुकी हैं नंदीग्राम से और भवानीपुर से।
1: बट बाशीरहाट इज द सिटेडल ऑफ अभिषेक बनर्जी, इट इज साउथ 24 परगनास।
7: अभिषेक बनर्जी वो जमाना गया ना, आज शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर है, सिस्टम उनके पास,
3: उनका तो ऑफिस ही चला गया। अभिषेक बनर्जी ऑफिस
7: देखिए
3: ये यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम हैज बीन टेकन ओवर बाय द बीजेपी
1: कोलकाता, यस।
3: सो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीएमसी।
7: ये जो दौर है ये सिस्टम का दौर है, कोई भी पार्टी हो सिस्टम बहुत काम करता है। मैं नहीं कह रहा कि चुनाव में बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम से आप बहुत तरह की चीजें आप हैंडल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है।
3: इफ आई मे आल्सो ऐड, यू नो देयर इज, आई मीन आई फाइंड अ ग्रेट डील ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द क्वेश्चन दैट यू आर पोसिंग अबाउट ममता बनर्जी एंड लुक इन यूपी इन मायावती। ममता बनर्जी डिपेंडेंट ऑन हर नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी डिपेंडेंट ऑन हर नेफ्यू, यू नो हु कीप्स गोइंग इन एंड आउट ऑफ द नेशनल कन्वीनर्स पोजीशन
1: एंड ही इज बैक नाउ
3: एंड वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग
7: फॉर टाइम।
3: आई थिंक देयर इज अ लेसन देयर, देयर इज अ लेसन देयर दैट व्हेन यू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मायावती डिड और अ ममता बनर्जी डिड, व्हेन यू टुडे इफ यू लूज टू द बीजेपी, इफ यू आर सीडिंग ग्राउंड टू द बीजेपी, योर पोटेंशियल ऑफ recapturing that ground today is very, very difficult.
1: Is Mamata Banerjee's politics over?
3: Well, I never say never again when it comes to Indian politics, but I am seeing a great deal of similarity in the political path which Mayawati had walked on and now the political path that Mamata Banerjee is walking on. The only difference is this, that Mayawati ultimately did stitch some kind of an understanding with the BJP, we all know. Mamata Banerjee's entire party has moved to the BJP. Mamata now is suddenly finding some solace and comfort in being on the right side of the Congress party for how long? Because ultimately she'll also ask herself this question, that if all these bipolar results, despite all this street agitation, everything, is not working for the Congress party, what does she do? Just like Rahul Gandhi is looking for, you know, new style of protest and politics, Mamata will also be forced to look at some new style of politics and who knows, maybe new style of protest.
1: Funny thing is, we're talking about Mamata Banerjee. The Congress was fighting this election and Adhir Ranjan Chaudhary, former LOP, former president, before this by-election, and by the way, Reji Nagar falls in his area only, was sitting in London wearing a hat and sending bites on ANI about how the democracy is being killed by the BJP.
4: लेकिन मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया था कि ममता बनर्जी को अब कांग्रेस के अंदर विलय कर देना चाहिए, मुझे लगता है एक अच्छा प्रस्ताव था। अब कांग्रेस अकेले दम पर, ममता बनर्जी अकेले बंगाल के अंदर कोई ताकत बन पाएगी, मुझे इसकी संभावना कम नज़र आती है। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में जाएगी और वैसे भी बंगाल के अंदर अगर जाती है तो सबसे बड़ी लीडर तो वही रहेगी। अधीर रंजन कह रहा है ममता बनर्जी को लीडर मानने को तैयार है, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भी बनेगी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बेहतर ऑप्शन है कि वो कांग्रेस में जाए और एक बड़ी ताकत बने, क्योंकि लोकसभा में उनको कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। अलग अलग लड़के मुझे लगता है बहुत ताकत नहीं बन पाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है। मुस्लिम वोट आप देखिए, नौगांव आसाम लोकसभा सीट दो बार से कांग्रेस के पास थी, वहाँ थर्ड नंबर पर जा रहे हो, आप अपना मुस्लिम वोट बचा के नहीं रख पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती की, जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस सब कुछ करने को तैयार है, वो वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं है, वो शिफ्ट हो रहा है।
1: देयर इज वन पर्सन हु विल बी हैप्पीएस्ट टुडे विद दिस, इट विल बी अखिलेश यादव। ही इज सिटिंग प्रिटी इन अयोध्या, ही इज डूइंग राम कथा ओवर देयर। कांग्रेस हैज लॉस्ट नागांव एंड इट हैज लॉस्ट दीस टू सीट्स इन वेस्ट बंगाल।
6: मुझे लगता है अखिलेश जी फाइनल वर्ड। अखिलेश यादव थोड़े अलर्ट भी हो गए, जो आज ममता बनर्जी के साथ हो रहा है ये देख करके, कि अगर क्षेत्रीय क्षत्रप अगर नीचे जाते हैं, अगर उनका आधार कम होता है तो फायदा किसको होता है? दोनों राष्ट्रीय दलों को होता है, बीजेपी को होता है, कांग्रेस पार्टी को होता है। छह महीने पहले जो ममता बनर्जी राहुल गांधी के नाम पर तैयार नहीं थी, आज वो दिल्ली आई है और वो राहुल गांधी की अगुवाई में वहाँ पर राष्ट्रपति भवन गई है। कल अखिलेश यादव के साथ भी ये हो सकता है, तो इसलिए उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी।
1: ओके, एवरीवन शुड बी ऑन गार्ड। इनफैक्ट वी आर एंडिंग विद दिस ब्रेकिंग, एज फार एज द कर्ब्स व्हिच हैड बीन पुट इन दिल्ली बाय द सेंटर बाय द दिल्ली पुलिस इज कंसर्न्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कॉपी हैज बीन एक्सेस्ड बाय एनडीटीवी व्हिच हैज कॉल्ड, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर हैज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शंस एंड ओवररीच, नो आउटराइट प्रोहिबिशन ऑन मूवमेंट ऑफ मेट्रो ट्रेन, परमिट ऑपरेशंस इन अ रेगुलेटेड फैशन, पब्लिश ट्रैफिक एडवाइजरी इन न्यूज़पेपर्स। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट वेरी clear, there cannot be wholesale restrictions put in place. Now, with the kind of preparations that the government, the Delhi police has done, is Saturday going to see a redux of the 20th of July? What we had seen during the anti-NEET paper leak protest, we'll be keeping a close watch for today. Thank you very much, all gentlemen, for having joined me on the show. Thanks very much for having tuned in. And remember, when it's any big story that you want to get to the bottom of, the buck stops here. Thanks for watching.

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा
6: सबका

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना।

0: शुरू करूं।
1: कौन देखेगा फिर फिल्म में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है,

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: यार लोन भूल गया मैरी। It's just a good bank ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: There's nothing small about
3: us. उज्जीवन, nothing small about us.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: आओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. The sharpest

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026.

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders. 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्म में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: এটা 1947-এর 20 জুন বাঙালি কংগ্রেস ভারত ভাগ করেছিল, আর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পাকিস্তানকে ভাগ করে দিয়েছেন। অতএব এখানে এসব চলে না, মূল লাইনের স্রোতে সবাইকে আসতে হবে। 46% ভোট পেয়েছি আমরা রাজ্যে, আগামী নির্বাচনগুলোতে 60%-এর বেশি ভোট পাব।
1: নন্দীগ্রাম जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, जनता के खिलाफ हिंसा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोकने का एक ऐतिहासिक प्रमाण बना था, आज सुशासन का संकल्प लिए नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है।
2: ये जीत हमारा जीत नहीं है, ये कमल का जीत है। ये जीत के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर हेडक्वार्टर जी एवं द्वितीय संचालक गोलगा जीत जय। ये जीत तो हमारा बूथ कार्यकर्ता का जय है, ये जय तो हमारा मंडल प्रेसिडेंट अध्यक्ष का जय है, हमारा कोई जय नहीं है, हमारा के लिए कोई बात नहीं है।

0: session start. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
1: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
2: कौन देखेगा फिर फिल्में?
3: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
4: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं
0: है। ITW presents NDTV Yuva 2026.
5: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
6: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
7: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how.
8: नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
9: ही इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पॉलिटिशियंस ऑफ दिस सेंचुरी प्राइम मिनिस्टर टू 1.5 बिलियन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अनडिस्प्यूटेड फेस ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिचेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी He takes pains to remind everyone that despite his exalted station, he was and remains a man of the masses.

0: ahead and hold over Kashmir. Statehood of Jammu and Kashmir was revoked and Ladakh separated as a separate union territory as it came under the direct control of the Modi government at the centre. In solving Kashmir, Modi promised unprecedented development for the entire region.
1: जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है।
2: जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है।

0: था जहां इन्होंने इनका जो कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था, और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनज़र इस जो जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
1: गंभीर ने आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले, और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान, हाँ तोते में, तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
2: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा। तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
3: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेंजी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से दिल्ली में, और जो जंतर मंतर है वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में अगर आप ही बोलते हो कि वहीं पे हो सकता है प्रोटेस्ट, कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर जाए, लेकिन तब भी हम लोग को रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने से।
4: Moving on, it's the India Bloc versus the CEC, and the India Bloc this time has taken its fight against the Chief Election Commissioner Ganesh Kumar to the President. Led by Rahul Gandhi, opposition MPs marched to Rashtrapati Bhavan, where a delegation met the President and submitted a memorandum seeking Ganesh Kumar's resignation. The Bloc has also demanded the suspension of SIR, restoration of deleted voters, a return to the paper ballots, and action over its elections it alleges were stolen. Rahul Gandhi says that the opposition will approach the Chief Justice of India on Monday, claiming it has evidence of electoral manipulation.
5: She accepted our statement and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India when she is ready to accept it.
6: Rahul Gandhi aur unke netrutv mein Indi Gathbandhan ke neta जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी। परंतु जिस समय राहुल गांधी ये बोल रहे थे, उनके साथ खड़े हुए नेताओं की भाव भंगिमा और उनके चेहरे के भाव ये साफ परिलक्षित कर रहे थे कि जो बोला जा रहा है संभवतः सच से उसका कोई सरोकार नहीं है।
4: And moving on to the other stories that we're tracking, and this one is from the state of Tamil Nadu, where bipoll result came out today. Vijay's party had a major sweep in both the constituencies. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has in fact called the TVK's bipoll win a victory for democracy and people and political civility as well. He claims that voters rejected money and power, personal attacks, taking a swipe at the DMK. But these wins mean much more than the two seats. Here's why these bipolls matter for the TVK, DMK and the AIADMK. Well, the TVK has won two seats previously held by the AIADMK, taking

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत नहीं है, और ये बहुत ही अल्प समय हमें दे करके इन्होंने प्रोटेस्ट की, एक एप्लीकेशन डाली है। इसके बावजूद इनका जब ये एप्लीकेशन पर गौर किया गया तो पाया गया कि इन्होंने, इनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, जहाँ इन्होंने, इनका जो कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था, और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनज़र इस जो जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
1: और गंभीर ने आप ऐसे कैसे कह सकते हो? इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले, और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान, हाँ तोते में, तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
2: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा। तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
3: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेंजी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से दिल्ली में, और जो जंतर मंतर है वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में अगर आप ही बोलते हो कि वहीं पे हो सकता है प्रोटेस्ट, कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर जाए, लेकिन तब भी हम लोग को रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने से।
4: Moving on, it's the India block versus the CEC, and the India block this time has taken its fight against the Chief Election Commissioner Ganesh Kumar to the President. Led by Rahul Gandhi, opposition MPs marched to Rashtrapati Bhavan, where a delegation met the President and submitted a memorandum seeking Ganesh Kumar's resignation. The block has also demanded the suspension of SIR, restoration of deleted voters, a return to the paper ballots, and action over its elections it alleges were stolen. Rahul Gandhi says that the opposition will approach the Chief Justice of India on Monday, claiming it has evidence of electoral manipulation.
5: She accepted our statement and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India when she is ready to accept it.
6: Rahul Gandhi aur unke netrutv mein Indi Gathbandhan ke neta जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी। परंतु जिस समय राहुल गांधी ये बोल रहे थे, उनके साथ खड़े हुए नेताओं की भाव भंगिमा और उनके चेहरे के भाव ये साफ परिलक्षित कर रहे थे कि जो बोला जा रहा है संभवतः सच से उसका कोई सरोकार नहीं है।
4: And moving on to the other stories that we're tracking, and this one is from the state of Tamil Nadu, where bipoll result came out today. Vijay had Vijay's party had a major sweep in both the constituencies. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has in fact called the TVK's by-poll win a victory for democracy and people and political civility as well. He claims that voters rejected

0: है और ये बहुत ही अल्प समय हमें दे करके इन्होंने प्रोटेस्ट की एक एप्लीकेशन डाली है। इसके बावजूद इनका जब ये एप्लीकेशन पर गौर किया गया तो पाया गया कि इन्होंने इनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, जहाँ इन्होंने इनका जो कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था, और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनजर इस जो जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
1: और गंभीर ने आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले। और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान? हाँ, तोते में। तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
2: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा। तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है? आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
3: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेंजी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से दिल्ली में, और जो जंतर मंतर है वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में अगर आप ही बोलते हो कि वहीं पे हो सकता है प्रोटेस्ट, कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर जाए, लेकिन तब भी हम लोग को रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने से।
4: Moving on, it's the India block versus the CEC, and the India block this time has taken its fight against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to the President. Led by Rahul Gandhi, opposition MPs marched to Rashtrapati Bhavan, where a delegation met the President and submitted a memorandum seeking Gyanesh Kumar's resignation. The block has also demanded the suspension of SIR, restoration of deleted voters, a return to the paper ballots, and action over its elections it alleges were stolen. Rahul Gandhi says that the opposition will approach the Chief Justice of India on Monday, claiming it has evidence of electoral manipulation.
5: She accepted our statement and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India when she is ready to accept it.
6: Rahul Gandhi aur unke netrutv mein Indi Gathbandhan ke neta जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी। परंतु जिस समय राहुल गांधी ये बोल रहे थे, उनके साथ खड़े हुए नेताओं की भाव भंगिमा और उनके चेहरे के भाव ये साफ परिलक्षित कर रहे थे कि जो बोला जा रहा है संभवतः सच से उसका कोई सरोकार नहीं है।
4: And moving on to the other stories that we are tracking, and this one is from the state of Tamil Nadu, where bipoll result came out today. Vijay had Vijay's party had a major sweep in both the constituencies. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has in fact called the TVK's bipoll win a victory for democracy and people and political civility as well. He claims that voters rejected money and power, personal attacks, taking a swipe at